प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 Trent Avenue North East Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशन तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-256-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नु 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225

111 एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन दे मनिंदर सिंह तिलोहरन दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: में
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दियां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4060 या विजिट करो www.

0: जिस लागे पीर पे राम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेला रे जग दुतर तरिया दुतर तरिया
1: महला पहला सत्य रेखांड सत्य ब्रह्मांड।

जियड़ा बल बल कीना, जियड़ा बल बल कीना, सुन शब्द तुम्हारा, सुन शब्द तुम्हारा, सुन शब्द तुम्हारा, सुन शब्द तुम्हारा।

0: मेरा मन तन नाम आधार है, मैं बिख जाली। जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली।
1: महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पर।

इत संजम दुख जाए पौड़ से प्रीति सुतोख जिन सचो सच ते आया उन्नी मंद पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तो बख्शीसी अगला नित देव चढ़ सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया।

हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राज, गुर सतगुर सच्चा सौ है, सिख दे हर रास, तन तन बन जारा बन ज है, गुर सबास, जन नानक गुर तिन्ने पाया, जिन तुर लिखत लीला।

जिनकी लिखे पत पवै चंगे से ई के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिन्ने कसम त्याय न जन तक बस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया एक रन तमिल रह एक आपो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजी सत समाया सत समाया सत समाया।

0: योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्द सूर्य शब्द शुद्ध प्रकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानक ताका दास है, सोई नरन जंग देव महला दूजा।
1: एक कृष्ण सर्व देवा देव जीवा तात्मा, आत्मा बास दे सो एक जाने पे हो नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला पहला।
0: कुंभ बद्धा जल रहा जल बिन को बनाए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पड़िया होए गुनगा। तायो में साधना मारी है दे कल कलना, तेरे हो नौ पचारी ऐसी कला न किडी है।

0: दर्श तुम्हारा पेख पेख जी, दर्श तुम्हारा पेख पेख जी, गुर का दर्शन देख देख जीवा,
1: गुर का दर्शन देख देख जीवा,
0: गुर के चरण तो

सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलहे शलन सबल मालन भगत फालन कान कुर ने कलंक वजी डंक चढ़ू।

0: गुर अर्जुन को दे आया।
1: सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। जीवन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता, एनस ध्यान तावे पलक ना सोवे जियो। जाको देखत दिर्दर जावे, नाम सो निदान पावे। गुरमत ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया। जग जन्म मरण पगा ए आई ही है परती, परती ही आई जिन जन के तिन को पदवी उच्च पई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुट गया, डिब दृष्ट कारण करन। सतगुर गुर सेव लखगत जाकी, श्री रामदास तारन तरनं।
0: जगत उदारन नव निदान, भगते पाव तारन अमृत बूंद हर नाम। बिस्की बिखे निवारन सहज तरोवर फलो ज्ञान।

0: तीन पवन पर पुर्यो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर, गंधर खोजंत फिरे। अपनासी अचल अजुनी संभो, पुरखोतम अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मनते आयो। श्री गुरु रामदास, जय हो जय जग में तैं हर परम पद पायो।
1: श्री गुरु सत जियो। गुर कहा मान निज निदान, सत जान मंत्र है निस बस्तर होए कल्याण। लहे परंगत जियो, काम क्रोध लोभ मोह जान जान चो शाद त्रो। ओम में का बंद काट सा संग्रह।

सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आदि जुगादि अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उद्रण

ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमारथ सत्संग।

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनि सर रस करस को ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जच है मुख दंत रसन सगल कस जावत

कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जनम जनम दी कटिया। सजन सच्चा पाते सा, सिर सहादसा। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा। सजन सच्चा पातिसा, सिर साहा दैसा। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा।

मन आनंद है जियो, साचो साचा नाम, गुण गोविंद है जियो, जीवा तेरा नाय, मन आनंद है जियो, साचो साचा नाम, गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिरजी तिन गोई, परवाना आया हुकम पठाया, फेर ना सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई,

तुम सर अवर ना को आया जाय से जियो हुक्मी हुए नबेड़ा परम चुकाए से जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा

गुर का शब्द विकाणे पारस परस्या पारस होए जा तेरा मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर सच्चा।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला। जीवा तेरा नाय, मन आनंद है जियो, साचो साचा नाव, गुण गुण।

राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सिद्धि मन वजियावत राग रतन परवार परियां शब्द गावण आई।

0: सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसाव ए नाम जिनके मन वसे वाजे शब्द चले कह नानक सत्ते साहब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जन पुखा सब गवाहिया कर शांत सुख मन आए वसिया जन इच्छा सब पुख सदा कुर्बान किता गुर विटो जस दिया ए वडे आईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सपा गए शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते तुर करम पाया तुद जन को से नाम हर कह लागे कह नानक तैस तो आदत करे आनंद सुनो वडपागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सर से सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
1: बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खाल

0: जो चले पाए। चौकन मुन अनाया बै चौके आया, सिखा कर चढ़ाया गुरु ब्रह्मतिया, ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
1: लख चूड़िया लख जानिया लख कूड़िया लख गाय, लख ठगिया पैना मिया रात दिन जी नाल, तक पाव कतिया ब्राह्मण वटे आए कोई बकरा दिन खाए।

मन अंदा नाओ सुजान कौर साहब दया कृपा करता साई कर कराए से सुसिक्षा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होए परवान ता खसम का मिल पाए से खसम पावे सो करे।

0: अंतर पूजा पड़े कदे बांसन जो का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाए तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे नवाज श्री गाय तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पियावे साध कुड़ी रास कुड़ा वापार कूड़ बोल करे आर शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा परपूर मथा टिका तड़ तो ठीक खाई हाथ श्री जत कसाई नील बत्र पर प्रवान मले स्थान ले पूजे प्राण आपाखे का कुठा बकरा घाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार पर आए बैठे कूड़े यार मत पिटै भी मत पिटै ए अन्न साडा पिटै तन पिटै फिर करें मन जुठे चली परे कहो नानक सच ते आई है सुच हो वैता सच पाई है पौड़ी चित अंदर सब को देख नजरी हेठ चलाएंदा आप देवड़े आई आप कर्म कराएंदा वडूड़ा वड़ मेदनी सिर सिर तंद है लाएंदा नदर उपटी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगना पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा

हो गई तेन पिछहर काहे कहेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट नया वे हर पुन केरी हर पुन के।

0: दिव सरात दई दया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जने नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाले ना ते आया गए मसकत का नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाउ सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए कर नाउ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के

साचो साचा नाम गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिरजी तिन गोई, परवाना आया हुक्म पठाया, फेर ना सकै कोई, आपे कर वेखै सिर सिर लेखै, आपे सुरत बुझाई, नानक।

0: तृष्णा नाम निवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला। जीवा तेरा नाय मन आनंद है जियो साचो साचा नाम गुण गोविंद है जियो।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

दातरियां तेज हो रही ने। पता नहीं किसान ने कदों अपने कामे नू आख देना है इस फसल नू हुण वड दे इहदी लोड़ नहीं है। सो सतसंगियो गुरु नानक साहिब की आख रहे ने, हम आदमी हां एकदमी।

झूठ ते सच लेना है, गुरु नानक ने भेजया है। नौकर चाकर सुन के हैरान हो रहे ने किहो जिहा ग्राहक है। कदी झूठ ते सच भी दुकाना ते विकदा है, पर मूल चंद सिमरन वाली

और पिन दे नाल लिख दिता मरना सच है। पुड़ी बना के मरदाने नू पकड़ा देती, दूजे कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। दो पुड़ियां बना के मरदाने नू पकड़ा दितियां। मरदाना आया, सतगुरु आ सौदा ले आया। मरदानिया खोल इस दे विच की है, कुड़ी खोली है।

झूठ है। गुरु नानक मुस्कुराए, मरदानिया आज तैनू सही दुकानदार मिलिया है, नहीं ते इस दुनिया विच मरना ते किसे नू चेते भी नहीं है। जे कोई आखे ना मैं सदा चिर इस दुनिया ते रहना है, कदी नहीं मरना, ते ए निराई झूठ है। जे कोई आखे भई पल दा वसा नहीं, पता नहीं कदों दम निकल जाना है, ते ए बिल्कुल सची गल है। भई मरदानिया तू मैनू दस, तू मौत नू किन्ना क नेड़े समझदा है। सतगुरु अज दा सूरज चढ़िया देखिया है, पता नहीं कल दा सूरज चढ़िया देखना है कि नहीं देखना है। नहीं बई तू ते मौत नू बहुत दूर समझदा है। भाई बाला जी तुसी दसो, मेरे मालिक दो पहर घड़ियां दिन दियां बीतियां ने, पता नहीं अगलियां दो घड़ियां तकनियां हन कि नहीं। नहीं बालिया तू भी मौत नू बहुत दूर समझदा है, एडे दूर ते नहीं मौत। फिर सतगुरु तुसी दसो, ते गुरु नानक साहिब जी ने तनासरी राग दे विच ये शब्द उचारिया, हम आदमी हां एक दमी, जेड़ा दम लिया उसे दम दे मालक हां। एक साह लिया है पता नहीं दूजा साह आना है कि नहीं आना है। कोई मोहलत नहीं, इन्हीं की गल है। एक खिन मात्र विच पता नहीं की दा की हो जाना है। गहरी करके नीम खुदाई उपर मंडप छाए, ऐ जीव मकान बनांदा है ना, किडियां डूंगियां डूंगियां नीयां पवांदा है, उपर उच्चे उच्चे महल बनांदा है, हर एक चीज गारंटी वाली लांदा है। नीयां पक्कियां मकान भी पक्का, ते बिच रहण वाला इंसान कच्चा। कड़ी दा भी विसा नहीं, मार कंडे ते को दकाई, जिन त्रिण तार मूंड बलाए। एक मार कंडा ऋषि होया है, इसदी उम्र हजारां वर्ष दी होई है। जे सेवकां ने आखिया महापुरशां नू भई हजार वर्ष कढ़ने ने।

एक बड़ी सोहनी उदाहरण दे रहे ने। एक बड़ा लालची बंदा, धनवान बंदा, उन्हूं जम लैण वास्ते आए।

सीताप दीवान बुलाया, चल तेनू मालक दी दरगाह विच बुलाया है, उथे तेरे कोलों पुछना है भी दस क्या ते खटिया कहां गवाया। किन्ने सवास तू प्रभु दी जाद विच गुजारे ने, किन्ने वैकार विच खोए ने, धर्मराज ने पुछना है। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, जमा ने आके पकड़ लिया। ते ए बड़ा ही लालची हेरा फेरियां वाला सी, जमा नू पता की आख रहा है, करो अरदास गाव किछ बाकी, लेहो नवेर आज की राती, किस भी खर्च तुम्हारा सारो, तजोरी खोल देती है, जिन्ने पैसे लेने लै लवो, इंद करो अज दी रात मैनू छड़ देवो, ते कल आपां तुर चलांगे। जमा नू भी लालच दे रहा है, कबीर जी शब्द अंदर दस रहे ने, किस भी खर्च तुम्हारा सारो, जिन्ना खर्चा लेना है लै लवो, तजोरी खोल के बैठा है, कल टुर चलांगे, क्योंकि मैं बहुत लोकां नाल हिसाब करना है, कईयां कोलों पैसे लेने ने, अज दी रात विच लै लवांगा। जमा ने आख्या ओए भोलिया, ये ठगियां ये हेरा फेरियां तेरी दुनिया विच चलदियां होणगियां, साडी दुनिया दे विच ऐ ठगी नहीं चलदी, सारी तजोरी दा धन दे देवें, इहदे बदले तैनू एक भी सवास होर नहीं असीं छड़ सकदे, तैनू लै ही जाना है, किन्ना भी लालच दे, हथां नू हथ कड़ियां, पैरां नू बेड़ियां लाइयां, ते खिच के लजा के धर्मराज दी दुरगाह दे विच सुट दिता है। सो सतसंगियो, नाल की जाना है, जिहड़ा नाम जपिया है, जिहड़ा पुन दान कीता है। बाबा नंद सिंह जी नानकसर वाले बख्शिश करदे सन, असीं ते हर वेले तैयार रहीदा है, पता नहीं उस मालक ने उठ के जोड़ा भी पाउण देना है कि नहीं पाउण देना है, कोई पता नहीं। इसलिए असा हर वेले तैयारी रखी दी है, भी जदों मर्जी बुला ले, क्यों पता है ना, हम आदमी हाँ एकदमी, जद तैनू पता है क्यों अड़ियां करदा है, हर वेले तैयारी विच रहा कर, भाव सेवा सिमरन भी करया कर, एक ना एक दिन तू मरना जरूर है। सतगुर पातशाह तनासरी राग विच सानू

सारी दुनिया टुरी जा रही है, आपा भी टुर जाना है। गड्डी स्टेशन तो टुरी है, जिथे किसी की टिकट है उतारी जा रही है। ये दुनिया का कार विहार संसार का समा लंघता जाता है, जेदा जेदा समा आई जाता है इथों टुरी जाता है। संग चलत है हम भी चलना, सबने चल जाना है, इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, पाल रहे हम रहन न पाया।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुवाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवामा दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम वाहेगुरु साहेब जी। श्लोक महला तीजा। तृष्णा दादी जल मोई, जल जल करे पुकार। सतगुर शीतल जे मिला, फिर जला ना दूजी वार। तृष्णा दादी जल मोई, जल जल करे पुकार। सतगुर शीतल जे मिला,

धन गुरु अमरदास साहब जी कह रहे ने नानक विण नाम है नाम तो बिना निरभौ को नहीं ख्याल करो भय पता कित्थों आंदा है अज्ञानता चो आ बंदा पहलों अग तो डरदा हुंदा सी ज्ञान हो गया हुण आपां डरदे अग तो आ बिजली कड़कदी हुंदी सी लोग डरदे हुंदे सी हुण पता लग गया बदलां बारे नहीं डरदे आपां पहलों कुदरती घटनावां वापरदियां सी चलो मैं होर उदाहरण दवां बच्चा है जिवें आ छोटा हुंदा आपां कहने बाऊ आ गया बिल्ली आ गई जदों उनू ज्ञान हो जांदा डंडा लैके उसे बिल्ली नू भजा लैंदा तो डर अज्ञानता चों पैदा हुंदा ते आपां कहांगे सानू ते ज्ञान है भाई वह ज्ञान नहीं वह जानकारी है ज्ञान दे अर्थ ने बाणी च अनुभव जिवें वेखो किसी ने दीवे दी जानकारी लई है वट्टी हुंदी है तेल हुंदा है पर एक ने दीवा जगा लिया तो जानकारी होनी माड़ी नहीं है पर घर का हनेरा उदों ही बुझेगा जदों दीवा बाल लिया जाएगा तो अनुभव है दीवा बल जाना मैं जो बेनती कर रहे हैं तो जिन्ना चिर तक अज्ञानता है डर बनिया रहेगा ते साहब ने ता ही कहे ज्ञान आ गया डर नहीं रहा ते डर पता की करदा डर गुलामी पैदा करदा डर हमेशा ही गुलामी पैदा करेगा आताई जिन्हां ने दुनिया नू गुलाम बनाउणा हुंदा है पहलों डराउंदे ने हाकम वर्ग भी डराउंदा है ते जिन्हां ने धर्म नू अपने स्वार्थ वास्ते वरतने लोकां नू डराउणा किसे दिन वार दे नां ते वास्तु चक्कर दे नां ते लकीरां दे नां ते पहलों डराउणगे डर च फिर बंदा गुलाम बन जांदा है ते गुलाम कोलों जो मर्जी करवा लिया जाए तो गुरु ज्ञान ताई साहब जी कहंदे जिथे ज्ञान आ गया उत्थे डर नहीं रह जांदा गुरु तेग बहादुर जी का वचन आप जी की रसना ते रहिंदा भय काहू को देत नह नह भय मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान कौन है ज्ञानी जिन्नू ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया फिर की है ना वह डरद ना वह डरा तो मैं बेनती की डर उन्ना समय ही है जिन्ना समा ज्ञानता है जदों भगतां रब दे प्यारियां नू अपना ज्ञान हो गया ना फिर वह डरे नहीं है भगत कबीर जी नहीं डरे साहबजादे नहीं डरे किड्डियां कुमरां सी डर है सी उन्ना लागे भगत कबीर जी नहीं डरे बड़ा परवासा सी मालक वाहगुरु का तो गुरु सानू ज्ञान दिंदा है ज्ञान चो निरभयता मिलेगी याद रखियो ते जिन्ना चिर तक ज्ञान नहीं आया कहण नाल डर नहीं मुकना भावें जिन्ना मर्जी कही जाइए आखी जाइए तो गुरुदेव जी कहिंदे पतत उदाहरण भय हरण हर अनाथ को नाथ वाहगुरु दा नाम मेरे सतगुरु दी बाणी सानू पवित्र भी करदी है साडे भय भी हर लैंदी है बाणी चों नाम मिलदा है बाणी चों ज्ञान मिलदा है मैं कई बार कहना हुना कई कह दिंदे ने नहीं मैं कहना हुना अग बलदी है ना जदों गुरमुख प्यारियो अग बलदी होए दो चीजां कठियां मिलदियां ने अग कोलों सेक भी मिलदा है अग कोलों प्रकाश भी मिलता है जदों बाणी पढ़ते सुनते हाँ दो दातां कठियां ही वापरदियां ने ज्ञान भी वापरदा है नाम भी वापरदा है इनू वखरा ना जाणिया करिए तो गुरदेव जी कहिंदे साहब जी कहिंदे नाम तो बिना ज्ञान नहीं है ज्ञान तो बिना निरभयता नहीं कदे आउंदी तो नानक विण नाम है निरभौ को नहीं वह दुनिया दियां जिन्नियां चीजां आ जान ना बंदा उन्ना कमजोर हो जांदा है अज असी फिजिकल तौर ते तकड़े हाँ कोई कमी नहीं है मन ही डरी जांदा है ना साडा ते ज्ञान किन्नू चाहिए मैनू कहण देना मन नू चाहिए ज्ञान मन नू चाहिए ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन
ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀ ਚ ਰੋੜਨਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਭੈਤਾ

0: ਭੇਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਖ ਨਾਲ, ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਵਾਹ ਮਾਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੋਗੀ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਹਦੀ ਸਵਾਹ ਭਾਈ, ਗਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਂ, ਕਾਲੀ ਕੇ ਚਿੱਟੀ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਅੱਜ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਅਰਥ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਭੇਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਅਗਣ ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਇਕੱਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਭੇਖ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਭੇਖ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਤਿਆਗ ਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ, ਜਿੰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਆਪਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇਖ ਚ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਨਾ ਮਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ।
1: ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੈ, ਤਿਉਂ ਨਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ।
0: ਵਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁੱਡ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏ ਸੱਪ ਥੋੜਾ ਮਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਦਏ, ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਨ ਹੱਠ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ ਫਲ ਤੱਕ, ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਕਰਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆਨ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। फिर साहब कहंदे बाहर तू भाई कर लो जो मर्जी, बड़िया ने जतन किते, ग्रे तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़े पापी मन मंदा। मन ने ते फिर विकार नहीं छड़े साहब जी कहंदे। तो इस वास्ते सतगुर कहंदे क्यों, क्योंकि गुरु तो बिना आपां बहुत बार अपने तौर ते जिन्ना मर्जी कर लईए पर जिन्ना चिर तक गुरु दी रहबरी नहीं है, क्योंकि धर्म दे जगत च प्रयास माड़ा नहीं है पर प्राप्ति प्रसाद नाल हुंदी है। प्रसाद वापरदा उदों है जदों आपां प्रयास दी पकड़ छड़ दिंदे हां। बहुत बार आपां ना प्रयास दी पकड़ नहीं छड़दे, मैं दान कीता, मैं पुन कीता, मैं पाठ कीता, मैं कथा कीती। जदों प्रयास दी पकड़ छुट जाए प्रसाद अपने आप वरत जांदा है। तो गुरु नानक दे घर, गुरु रामदास साहब दे दर घर मुबारक है प्रयास करना है, पर दात प्रसाद नाल वापरदी है। ते जेड़ा प्रसाद दा अधिकारी नहीं बनिया तो साहब कहंदे निगुरे दा जेदे कोल गुरु दी जुगत नहीं, गुरु दी दीखिया सीखिया नहीं, सफलता नहीं मिलनी। सियाणे कहंदे ने कोई भी काम है ना दो ढंग चाहिए ने, ताकत चाहिए तरीका चाहिए। याद रखियो किसे बंदे कोल ताकत है धन दी शरीर दी तरीका नहीं है की करेगा वो, किसे कोल कल्ला तरीका है बस ताकत है ही नहीं, दो चीजां जुड़नियां चाहिदियां ने। ते मैं बेनती करा ताकत रब ने दिती, शरीर ताकत है, धन ताकत है, तरीका गुरु बख्शद है। जदों रब दी दित्ती ताकत गुरु दे तरीके नाल वरतदे आ याद रखियो उहदे चों मुक्ति मिल जांदी। तां ही साहिब कहंदे जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगढ़ सुजानी। जिन्नी ताकत रब दी है ते तरीका आ वेखो अग ताकत ही है ना, आ तरीके नाल चलदी है, गड्डियां चलदियां साडियां, मोटरां चलदियां ने। ताकत तरीके नाल जदों वरती जाए आबाद करदी है, ताकत दे पिछे तरीका ना होए बर्बाद भी कर देंदी है। तो गुरु तरीका बख्शद है, गुरु जुगत बख्शद है। गुर किरपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। जे साहब कहंदे निगुरे आ गुरु दे ज्ञान तो बाणी तो बाणे तो सखणे आ, बाहरों भावें जिन्ने मर्जी सदाचार बनते रहिए भय नहीं पैदा होना, अदब नहीं पैदा होना, कर्म अजाई चले जांदे ने।
1: सतगुर दाता सेवीऐ शब्द वसै मन आए।
0: सतगुर दाता है ते दाता की है दयालु बड़ा, दाता होछा नहीं चाहिदा, होछा शाह ना कीचई फिर पछोताई है। सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए। गुरु बहुत वड्डा दाता है पर तिल मात्र भी तमा नहीं है गुरु कोल, ए वड्याई है गुरु दी। ते अपना जुगती सिखनी चाहिदी है, कोई भी सिख दे कोल कर्म होए दावा ना होए, अपना दावा कर बैठते हैं माड़ा नहीं है कोई भी कर्म, कोई गुरु जिथे कृपा करता पर जदों दावा कर देने, गुरु कोल दावा थोड़ा, रब कोल भी दावा नहीं है। अकृत घणा नूं वाहिगुरु पाल संभाल लैंदा। कदे जणाया उन्हें किसे महापुरख नूं किसे ने पुछया भी जदों रब नाराज हुंदा है ख्याल करियो, आखो सतनाम श्री, फिर आखो एक बार सतनाम श्री। एक महापुरख कोलों पुछया भी रब नाराज हुंदा है, ते महापुरख मुस्कुरा के कहन लगे नहीं, कहंदा नहीं फिर भी हुंदा है, ते रब की करदा है। वो कहन लगा जे रब नाराज होए किसे दी रोटी नहीं खोंदा, किसे दा परिवार नहीं खोंदा, किसे दी जान नहीं खोंदा। ते कहन लगा किद्दां पता लगे रब नाराज होया, कहन लगा जदों रब नाराज हुंदा किसे दे कोलों अपनी याद खो लैंदा। जे समझ लै तेरे कोल रब दी याद नहीं, जप नहीं है, बाणी नहीं है, समझ लै रब दी नाराजगी है। गुरुदेव जी कहन लगे दाता बड़ा वड्डा दयालु, सतगुर दाता है, सरबंश दानी है गुरु, आ सब कुछ दे के फिर कोई दावा नहीं, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। वेखो हाल कैसा ख्याल गुरु नू रब दा रहा है, दाता है गुरु। तो साहब कहंदे सतगुरु नू सेव के शब्द वसै मन आए, जदों गुरु दा शब्द बाणी नाम मन च वसदा है,
1: मन तन शीतल शांत होए, तृष्णा अगन बुझाए।
0: मन तन शीतल ने, तन भी मन दा प्रभाव तन ते है, तन दा प्रभाव मन ते है, ये दोनों चीजां जुड़ियां ने। जिवें तुसी भांडे च पानी पा दो, किसे च भांडे दा प्रभाव पानी ते है, भांडे च पई चीज ते है, ते भांडे च पई चीज दा प्रभाव भांडे ते हुंदा, जुड़े ने तन मन, दोनों दा व्यासी सिख नूं बनना है। तो गुरु दोनों ते कृपा करदा है, तन भी शीतल मन भी शीतल, तृष्णा अगन गुरु बुझा दिंदा है।
1: सुखा सिर सदा सुख होए, जा विचों आप गवाए।
0: जदों आपा मिट गया, जिथे आप है उथे पाप है, आप दा अर्थ है आपा, मैं जेड़ा आपा मेरी मैं चो बने, एक हुंदी है अनात्म दी मैं, एक हुंदी है आत्म दी मैं। अनात्म दा अर्थ है जेड़ी चीज ने नहीं रहना, जे मैं उदे नाल जुड़ी है ना वो दुखदाई होएगी, जेड़ी आत्म दी मैं सत स्वरूप दी सुखदाई होएगी। साडे कोल आपा बहुत वार अनात्म दा हुंदा है, ते जिन्हां चीजां नाल मैं जुड़ी है ते मैनू कहण देना कोई भी चीज बाहर दी शरीर तो अगे नहीं जा सकती, भावे जो मर्जी कहो आ मेरी आ मेरी आ मेरी, किन्ना भी सोहना कपड़ा होए शरीर तो अगे नहीं जांदा, किन्ना भी चंगा भोजन होए पेट तो अगे नहीं जांदा, अगे जांदा शब्द बाणी नाम। गुरदेव जी कहंदे ने तो सब तो वड्डा सुख है विचों आप गवाए, जदों अंदर मैं मिट जाए फिर ओही हो, मैं करके द्वैत बनी है ते ओही हो है ना। वेखो आपां कहांगे एक अंदर है एक बाहर है, आपां कहांगे हुण पर असल ये अंदर बार कुछ भी नहीं है, ये दीवारा करके बने हैं। मान लो किसी कमरे च तुसी बैठे हो, मैं अंदर बैठा है वो बाहर बैठा है, ख्याल करे हो असल अंदर बार नहीं है, दीवारा करके अंदर बार। जदों दीवारा हटा दिए मान लो बैठे उत्थे भी होइए, फिर थोड़ा कहांगे पीपे मैं अंदर है वो बाहर है, वो अंदर बार दीवारा करके बने हैं। तो इसे तरह द्वैत करके दो मैं बनी है, जदों ए गुरु मिटा दिंदा तो साहब कहंदे सदा सुख वापर जांदा है।
1: गुरुमुख उदासी सो करे, जे सच रह लेव लाए।
0: गुरु दी शरण च पै के उदासी दा अर्थ है मन निर्लेप हो जाना, ए दा अर्थ है नहीं चीजां छड़ देना, ए कतई नहीं है गुरु नानक दा सिद्धांत, ना छड़ियां जा सकदियां ने। हां गुरु कोलों पहलों विवेक मिलदा है, ख्याल करियो आपां विवेक लै रहे हां गुरु कोलों, अरदास मंग करदे हां विवेक दान, विवेक विचों वैराग पैदा हुंदा है, वैराग दे विचों निरलेपता हुंदी है, जिन्हों साहिब जी उदासी कहंदे ने। ते कोई लख जतन करे संसार छड के संसार नहीं छड़िया जांदा, हां मालक दा मिल जाना ही संसार दा छुट जाना है। ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। तो जे कहांगे संसार छड के संसार छड़ांगे नहीं छड़िया जाना, गुरदेव कहंदे आपा मिट गया, वैगुरु दे मिलन दे नाल संसार रहिंदा ही नहीं है, भाई कन्हैये वास्ते कोई दूजा रहा ही नहीं है, किथे चौवां पानी दी धार कोई दूजा नजर आया ही नहीं, तेरा कहया सतगुरु तैनू की आखां तू दुई दा पाठ पढ़ाया ही नहीं। तो गुरु मालक दा मिल जाना संसार दा छुट जाना है, ये सच्ची उदासी है। साहब कहंदे सच रह लिव लाए, जो सच विच सदा लिव ला के रखदा है।
1: चिंता मूल ना हो आई, हर नाम रजा आगाए।
0: उत्थे चिंता नहीं हुंदी, ये सारे नहीं दावा कर सकते, तुसी बख्शे कर सकते हो, पर बहुत वड्डी बात है जो गुरु कृपा कर दे तो चिंता मिट गई। गुरदेव जी बचन कर दे ने जिथे नाम रजा आघाए रज जाना, केड़ा रज है ये मन दा रज है, आत्म दी तृप्ति है, उथे फिर चिंता कदे नहीं व्यापदी।
1: नानक नाम बिना नह छूटी है होमे पचहे पचाए।
0: गुरदेव गुरु अमरदास साहब कहंदे नाम बिना छुटकारा नहीं है, नहीं ते मनुख होमे च ही खचत हो जांदा है। साडी विथ दा कारण होमे ही है, साडे दुखां दा कारण ही मैं। पता क्यों दुखी आपां अजकल, अपनी मर्जी चाहुंदे, होमे वाला अपनी मर्जी चाहुंदा है हरेक थां ते। आपां दुखी तां ही आ, परिवार मेरी मर्जी, गवांडी मेरी मर्जी, अपां ते कहने पंथ भी मेरी मर्जी नाल चले, मुश्किल तां आउंदी है। तां ही होमे इकट्ठा नहीं होण दिंदा सानू, हंकार वखरेवां पैदा करदा ते सिखां च नहीं चाहीदा। गुरु दे पंथ ठीक है, माड़ियां नहीं संपरदावां, सब चंगे आपां, मूल साडा गुरु है ते गुरु नाल जुड़िया उदों जांदा जदों मैं मिटदी, फिर आपां इक हो जांदे हां, फिर कोई वैर विरोध उभदा नहीं। तो गुरुदेव जी कहंदे इस मैं करके दुख ने, चिंता दुख बने ही तां है, असीं दुखी तां ही है मर्जी चलाउने आ, ते मर्जी दा मिट जाना, होमे दा हट जाना, तो साहब जी कहंदे तां ही सुख है, नहीं ते दुख पाउंदे रहंदे ने।
1: पौड़ी जिन हर हर नाम ध्याया तिनी पाए अड़े सर्ब सुखा।
0: गुरु रामदास साहब कहंदे जिन्हां ने हर हर त्याए, सुख माड़े नहीं है, सारी जिंदगी दुखां च थोड़ा रहनी है, उनु सारे सुख प्राप्त हुंदे ने।
1: सब जन्म तिन्हां का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भुखा।
0: गुरु रामदास साहब कहंदे उन्हां दा सारा जन्म सफल है, बहुत वड्डी बात है। सफर मुक जाना वड्डी बात नहीं है, गुजार लेना वड्डी बात नहीं है। सफल वो करदे ने जेड़े जीवन सवारदे ने, सवारण वालियां दा जीवन सफल है, नहीं ते गुजारन वाले ते बड़े आए बड़े गए। तो गुरदेव जी कहंदे उन्हां दा जीवन सफल है। गुरदेव जी कहंदे जिन्हां नूं नाम दी भुख लगदी है, संसार दियां भुखां दुख पैदा कर दियां ने, कोई भी भुख होए ना दुख पैदा करेगी, नाम दी बाणी दी भुख सुख पैदा करदी, उत भुखै खाए चलियां दुख। गुरदेव कहंदे आ नाम बाणी दी भुख लगी दुख चले जाने ने, माधो जल की प्यास ना जाए, जलते अगन उठी अदकाए। उथे फिर साहब जी कहंदे कोई दुख भुख नहीं व्यापदी।
1: जिने गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा।
0: जिन्हां ने गुरु दा बचन आराध्या, आराधना हुंदा है गहरा चले जाना, ध्यान तक चले जाना, साधना मुबारक है जिन्हां कोल आराधना है। तो साहब जी कहंदे उन्हां दे सारे दुख चले गए। चार वड्डे दुख ने साडे, जन्म रोग बुढ़ेपा मरण, ओ मिट जांदे ने।
1: ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा।
0: ओ संत गुर सिख भले ने गुरदेव जी कहंदे, जिन्हां दे अंदर बिंद मात्र थोड़ी जीवी पराई चिंता नहीं रही, चिंता वापरदी ही पराए चो है, ओपरे चो है, चिंता वापरदी उदों जदों आपां आउण बारे बारे सोचते हां, पछतावा वापरदा उदों जदों बीते बारे सोचदे, उत्थे बिंद मात्र भी चिंता नहीं रहिंदी।
1: धन धन तिन्हां का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा।
0: गुरदेव कहंदे अखीर ते ओ धन ने, गुरु धन है, सच जाणियो, अपना माण ना करियो, गुरु दा माण चाहीदा है, सच जाणियो, सिख अंदर चाहीदा है, भावें कोई पंथ है संपर्दा, माण गुरु दा रखिए, गुरु दा माण सिख दा भी बनेगा। आपां जुड़िए गुरु, लहर लहर तो वक्री हो सकती है, समुंदर तो नहीं, गहना गहने तो वखरा हो सकता है, वड्डी गल नहीं है, सोने तो नहीं, मैनू कहण देना साडे वखरेवें बाहरों हो सकते ने, कोई गल नहीं है, पर आपां गुरु तो वखरे नहीं है। सो बहुत जरूरी साडा गुरु धनता योग है, आपां वखरेवें ठीक है बाहरों, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਦਬ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਓਨੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਨੇ, ਲਾਹਾ ਲਿਓ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਿੰਗ, ਰੂਫਿੰਗ, ਸੌਫਟ ਫੇਸ਼ੀਆ, ਜੇਮਸ ਹਾਰਡੀ, ਈਵ ਸਟ੍ਰੌਫ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिट।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हों तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0731

करते यानी 4037170771 पे संपर्क कर सकते हो। ट्रेवल वर्ल्ड का पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा थोड़े तक पाठ पूजा वालों के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह के पूजा के समान की जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670-63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवामा दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: रब आप सुवामी

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोह बचावह। सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होय हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई शिव जू अवतरा। काल पाई कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियह हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज, किन्नी उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर

नाम कित संसार किरण राव सुर तर साख उत्तर दक्षण पूब दीस पश्चम जस पाख है जन्म ता एह सकयाथ जित नाम हर हृदय निवास सुर नर गण गंधर्व शेय दर्शन आसास पलाओ प्रसिद्ध तेजाओ तनाओ काल जोड़ कर त्यायाओ सोई नाम भगत भव जल हरण गुर अमरदास तै पायो कन हर बूंद बसो रोमावल कुसम बसंत गनंत न आवै राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर की काबे जान पल उनह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरी तेरी उपमा तू हे बाने आवै।

मिल अमृत अमृत पई सतगुर अमर प्रगास, सतगुर अमर प्रगास तास चरणामृत पावै काम नाम निह काम परम पद सहज समावै गुरमुख संद सुगंध

अपने शूटन को जतन करहौ, हम शूटे तुम आराधे, जौ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बाधे, अपने शूटन को जतन करहौ,